भगत जना के मन बिसरा। कोई सुखानी मनी लभदा फिरदा है, कोई नागमनी लभदा फिरदा है, कोई सुख लभदा फिरदा है, पर गुरु अर्जुन देव जी कह रहे ने जिन्हां कोल सुखां दी मनी सुखमनी है ना, उस कर दे रोग

प्यारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मनमोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो रतन उपाय तेरे अठसठ

जात खसम विसार रहते कम जात नानक नावै बाज सुनात राग गुजरी महला चौथा हर के जानु सतगुर सतपुरखा पिणो करो गुर पास हम की रे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरुदेव मुको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सुखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाओ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित वह उदम जा आहर हर जीव परया शैल पत्थर मह जंतु पाए ता कर जक आगे कर धरिया मेरे माधु जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहा जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किसकी तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाओ करिया ऊडे ऊडा वै सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सिर जनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्याव हो संतु जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एक को पुरख समाना एक दाते एक पेहारी जी सब तेरे चोज विडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना

कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़िया वरना कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई।

तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जाड़ोई। आसा महला चौथा।

तेरी तू सब नीति आया, जिसनो कृपा करहे तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लाधा मनमुख गवाया, तुदे आ

जी जंत सब तेरा खेल, जोग मिल विछुड़या संजोगी मेल, जिसनु तू जाना ही सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोय, तू कर कर वेख जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ै पहिले निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंकज मुह पग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी अले, मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाउ, ना हो जति

नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की यह तेरी बरिया। अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पव जल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा। जप तप संजम धर्म न कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की राखो शर्मा। जप तप संयम।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबेउ बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दह रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दह मुहे बचाव हो सुखी।

आज संगरिय पूर्ण हुए हमारी आशा तोर भजन की रह ब्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याहूं जो भर चाहूं सो तुम ते पाऊं।

त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छाओ, श्री अस तुझ जू करे हो रच्छा। राख ले हो मोहि राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप धरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

सेवकन को सबगुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पट पट की जाने, जब उदकर्ख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब आकर्ख कर तो

अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम, निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदनील अनाद संभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाकु भेव न पावत वेदा, ताको कृपाहन अनुमानत, महा मूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयउ राव कही भूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत्पुज खान बहुर रचदीनी, कहूं फूल राजा हवे बैठा, कहूं सिमट भयउ संकरी कैठा, शिगरी श्रेष्ठ दिखाए।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर दा पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गा बनियाइया शब्दो ता गावहु हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले।

जी को पुंचै तिसका हुए उदारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उतारो। तम संसार चरण लग तरिय सब नानक ब्रह्म पसारो।

रामत हुई। सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया, तरस पया मेहरा मत हुई। सतगुरु

पावन पंक्तियां सारे गाओ, अरदास करिए सतगुरु सबना दे घरां विच सुख बन जाए, सबना दे बिघन खत्म हो जाण, सब दे कारज रास हो जाए।

पावन पंक्ति एक बारी सारे गाओ। महाराज ने 500-600 साल पहला ही इस ब्रह्मंड नूं इस दियां बख्शिशां नूं दस्या। साइंस दान अज थोड़ा थोड़ा जान देंगे। कोई कहिंदा है सत असमान नहीं, सत पाताल नहीं, पर महाराज ने कहिंदे ने तेरी गिनती मिनती तो सब कुछ बाहर है। तेनू जान जान के समझ समझ के इको ही गल समझ आई, सतगुरु तू दरिया ओ दाना बिना मैं मछली कैसे अंत लहा। जह जह देखा तै तै तू है, तुझ ते निकसी फूट मर, तेरा किसी ने अंत पाया ही नहीं। हां जेड़े शुकर विच जुड़ गए, जेड़े तेरे विच मिलन दा जतन करते ने, फिर आप ही उन्हां नूं पता लग जांदा है तेरी बख्शिश किड्डी वड्डी है। सारा कुछ मंगदे हां, अज देण वाले नूं मंगो, दाता ही मंगदे रह गए। जो मंगया सो पाया कहिंदे ने, जेड़े देण वाले दाते नूं ही मंग लैंदे ने, फिर जीवन दा मनोरथ पूरा हो जांदा है, जीवन दी यात्रा सफली हो जांदी है।

बोलो जी, बोलना जी। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर कह गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास से हुए सहाय, अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण त्याए, जे डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरे कारण निदावे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु, गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार जी का ध्यान करके खालसा जी बोलो जी। निमाणिया दे मां निताणिया दे तां, नियोटियां दी ओट गुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह, तन तन तन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, शब्द गुरु दाता जी, आप जी दे मुबारक दर ते अरदास बेनती है, आप जी दे पाणी अंदर चार पहर दिन सुखां दा खुशियां दा प्रतीत हो। सतगुरु जी आप जिया ने अमृत वेले तो इस वेले तक खुले दर्शन दीदार दे के निहाल किया, महाराज जी रात दे दीवाना दी संपूर्णता, आप जी की सेवा संभाल, सोहला साहब जी की बाणी का जाप, आप जी के सेवक टहलिया पासों सेवा करदिया बेअंत फुलां हो जांदियां ने, बख्श लैणा। समूह संगतां दी तिल फुल भेटा दर प्रवान, सब दी हाजरी प्रवान, सेवादार हाजर ने निज स्थान, सचखंड पलंग ते विराजमान होवो, अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना जी, सुख होवे नाम चितावे नानक ना। वाहिगुरु जी का खालसा,

ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੌੜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਮਹਲ ਸੁਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰ ਏ ਨਮੈ ਸਤਿਗੁਰ ਏ ਨਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਕਲ ਕਲੇਸ ਤਨ ਮਾਹੀ ਮਿਟਾਵੋ ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤ ਅਗਨਤ ਅਨੇਕੈ ਬੇਦ ਪੁਰਾਨ ਸਿਮਰਤ ਸੋਧਾਖਿਅਰ ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਆਖਿਅਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ ਤਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ ਕਾਂਖੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਬ ਨ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਨ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਘਨ ਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨ ਵਿਆਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਦ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਲਾਗੋ ਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਧਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁੱਝੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਤਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਬੇ ਮੋਹਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਬੇਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਿਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਨੰਦ ਕਨੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸੈ ਹਰ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬਹੁ ਨ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਹਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਬਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ ਸਿਮਰਹਿ ਹੈ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਮਇਆ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਣੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਉਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚਹੁ ਕੁੰਟ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਆਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਰਣ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੋਤ ਮੀਤ ਨ ਪਾਈ ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ ਤਹਿ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਜਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੈ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੂ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਉ ਵਹੋ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ
लाख करोरी बंध ना परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपत आघावै जिह मार्ग एहो जात अकेला तह हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परमगत पाई है छूटत नहीं कूट लख बाही नाम जपत तै पार पराही अनेक बिघन जय आए संघारै हर का नाम तत्काल उधारै अनेक जोन जनमै मर जाम नाम जपत पावै बिसराम हौ मैला मल कबहु न धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै ऐसा नाम जपहु मन रंग नानक पाइय साधकै संग जिह मार्ग के गने जाय न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जेह पैंडै महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहा पंथ तेरा को ना सियानू हर का नाम तह नाल पछानू जह महा पायान तपत बहु काम तह हर के नाम की तुम ऊपर शाम जहा त्रिखा मन तुझ आकरखै तह नानक हर हर अमृत बरखै भगत जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उधरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निधान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एकै नानक जन कै बिरत बबेकै हर का नाम जन कौ मुकत जुगत हर कै नाम जन कौ त्रिपत भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब पर न भंग हर का नाम जन की वडयाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन कौ भोग जोग हर नाम जपत कछु नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन कौ आप प्रभ दीना हर हर जन कै ओट सताणी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुकत बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात एहु हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग वड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कश अवर ना होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए सलूक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पूर्ण दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमाय कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड प्रथमे फिरै चेर जीवै महा उदास तपी सरथी वै अगन माहे होमत प्राण कनक अशव है वर भूम दान नेवली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन नेमख नेमख कर शरीर कटावै ताओ भी होमै मैल न जावै हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ गे छुटै गर्भ गुमान ना मन ते हुटै सोच कर दिन सो अर रात मन की मैल न तन के जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहु न बिखया टरै जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहाँ होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहुत स्याणप जम का भौ व्यापै अनेक जतन कर त्रिशन ना त्रापै भेख अनेक अग्न नहीं बुझै कोट उपाव दरगै नहीं सिजहै छूट सुनाही ऊब पयाल मोह व्यापै माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए
चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की सेवा लागै, जे को अपना दुख मिटावै, हर हर नाम हृदय सद गावै, जे को अपनी शोभा लोरै, साध संग ए होमै शोरै, जे को जन मरण ते डरै, साध जना की सरणी परै, जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा, नानक ताकै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटै अभिमान, आपस कौ जो जाने नीचा, सो गनिए सब ते ऊंचा, जाका मन होए सगल पीरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन अपुने ते बुरा मिटाना, पेख सगल सृष्ट साजना, सुख दुख जन सम दृष्टेता, नानक पाप पुन नहीं लेपा, निर तन कौ धन तेरो नाउ, निथावे कौ नाउ तेरा थाउ, निमाने को प्रभ तेरो मान, सगल कटा कौ देव दान, करन करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो आपे, आपन संग आप प्रभ राते, तुमरी उस्तत तुमते होए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, सगल क्रिया मैं उत्तम क्रिया, साध संग दुर्मत मल हिरिया, सगल उद्दम मैं उद्दम भला, हर का नाम जप हो जी सदा, सगल बानी मैं अमृत बानी, हर को जस सुन रसन बखानी, सगल थान ते ओह उत्तम थान, नानक जिहे घट वसै हर नाम, सलोक निर्गुण यार एयान्या, सो प्रभ सदा संभाल, जिन किया ते सचीत रख, नानक निबहि नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार सिगारिया, गर्भ अगन मै जिने उबारिया, बार बविस था तुझे प्यारै दूध, भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद पया ऊपर साख सैन, मुख्य प्याउ बैठ कौ दैन, एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै, बख्श देहो तौ नानक सीजै, जेहे प्रसाद धर ऊपर सुख बसै, सोत प्रात मीत बनता संग हसै, जेहे प्रसाद पीवै शीतल जला, सुखदाई पवन पावक अमुला, जेहे प्रसाद भोगै सब रसा, सगल समग्री संग साथ बसा, दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना, किसे त्याग अवर संग रचना, ऐसे दोख मूड अंध ब्यापे, नानक काड ले हो प्रभ आपे, आद अंत जो रखन हार, किस्यों प्रीत न करै गवार, जाकी सेवा नाव नित पावै, ता स्यों मूड़ा मन नहीं लावै, जो ठाकुर साध सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, जाकी टहल पावै दरगह मान, तिसे बिसारै मुगद अजान, सदा सदा ए भूलनहार, नानक रखनहार अपार, रतन त्याग कौडी संग रचै, साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छडना सो अस्थिर कर मानै, जो होवन सो दूर परानै, छोड़ जाए तिसका श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै, चंदन लेप उतारै धोए, कर तब प्रीत पासम संग होए, अंधकूप मैं पतत बिकराल, नानक काड लेहो प्रभ दयाल, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात, बाहर भेख अंतर मल माया, शपश नाहे कश करे छपाया, बाहर ज्ञान ध्यान इसनान, अंतर व्यापै लोभ सुवान, अंतर अगन बाहर तन सुआ, गल पाथर कैसे तरह अथा, जाके अंतर बसे प्रभ आप, नानक के जान सहज समात, सुन अंधा कैसे मार्ग पावै, कर गह लिहो ऊड़ निभावै, कहा बुझारत बूझै डोरा, निस कहियै तौ समझै पूरा, कहाँ बिसन पद गावै गूंग, जतन करै तौ पी सुर भंग।

नानक राख लेहो आपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। कोए न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत। सगल समग्री तुमरै सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुरबानी। सलोक देन हार प्रभ छोड़ कह, लाग आन सो आए। नानक कहू न सी जई, बिन नावै पत जाए। अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्तु कारण बिखोट गवावै। एक पी न दे दस पी हरले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रभ मीठा, सर्ब सुख ताहू मन वूठा। जिस जाने अपना हुक्म मनाया, सर्ब थोक नानक तिन पाया। अगणत साहो अपनी देरास, खात पीत बरतै आनंद उलास। अपनी अमान कश बाहुर साहुले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुरुस का विश्वास न होवै। जिसकी बस्त तिसे आगै रखै, प्रभ की आज्ञा मानै माथै। उसते चौगन करै निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनेक भांत माया के हेत, सर पर होवत जान अनेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावै, ओ बिनसै ओ मन पछुतावै। जो दिसै सो चालन हार, लपट रहे ओ तह अंध अंधार। बटाऊ स्यों जो लावै नेह, ताकौ हाथ न आवै केह। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लै लाई। मिथ्या तान धन कुटुंब सबाया, मिथ्या होमै ममता माया। मिथ्या राज जोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असब बस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या ध्रुव मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। हस थिर भगत साधकी सरन, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनै, मिथ्या हस्त पर तर्प कोहिरै। मिथ्या नेत्र पेखत परत्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तहवै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल देहे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताकै दुर्गंध। बिन सिमरण दिन रैन बिरथा बिहाय, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। धन धन ते जन, जिह घट बस्यो हर नाव। नानक ताकै बल बल जाओ, रहत आवर काश आवर कमावत। मन नहीं प्रीत मुख हो गांड लावत। जानन हार प्रभु प्रवीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेसै आप ना करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिसकै अंतर बसै निरंकार, किस की सीख तरै संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जान चरण पराता। करौ बेनती पार ब्रह्म सब जानै, अपना किया आपे मानै। आपे आप करत न बेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियानप सगल ते रहत, सब कछ जानै आत्म की रहत। जिस पावै तिस लय लड़ लाए, थान तनंतर रहया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख जप नानक हरी श्लोक। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए, अहंमेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जिह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस को सिमरत परम गत पावै। जिह प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर। जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जिह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याइयै त्यावन जोग। जिह प्रसाद पाठ पटंबर हटावै, किसे त्याग कत अवर लुभावै। जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जिह प्रसाद तुझ सब को मानै, मुख ताको जस रसन बखानै। जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावै है, नानक पात से ती घर जावै है। जिह प्रसाद आरोग कंचन देही, लिव लावौ तिस राम स्नेही। जिह प्रसाद तेरा उला रहत, मन सुख पावै हर हर जस कहत।

जे प्रसाद तेरे सगल शेदर ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जे प्रसाद तुझ को न पहुँचै मन साथ साथ सिमरौ प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भागत करे। जे प्रसाद अपूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ कहो कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत साध तिसै त्याई। ही तिसै त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखै। जे प्रसाद करह पुन बवदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कहो सास सास चितारी। जिह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप। जिह प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिह प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जिह प्रसाद सुनै करन नाद जिह प्रसाद पेखै बिसमाद। जिह प्रसाद बोलै अमृत रसना जिह प्रसाद सुख सहजे बसना। जिह प्रसाद हस्त कर चलै जिह प्रसाद संपूर्ण फलै। जिह प्रसाद परम गत पावै जिह प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जिह प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ कौ मूल न मनो विसार। जिह प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड़ तू ताकौ जाप। जिह प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे। जिह प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जिह प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपाए सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सु प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु न किन्हू लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहै सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सो ज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं तावै साध संग आस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यों ने बैर साध कै संग ना बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हों ताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई। साध कै संग न कबहूं तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस्त अगोचर लाहै साधु कै संग आजार सहै। साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब नि सुतारै। साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं काश काल दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुखत हरै साध कै संग नरक पर हरै। साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशरत हर मेला।
जो इच्छा सोई फल पावे, साध कै संग न बिरथा जावै, पार ब्रह्म साध रित बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाउ, साध संग हर के गुण गाउ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट डीठा, साध संग भय आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा बेद न जानै, जेता सुनै तेता बख्यानै, साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भार पूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, सलोक मन साचा मुख साचा सोए, आवर न पेखै एक सबिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सूर सर्व कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक, ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाउ, नानक ज्यों पावक का सहज स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागै जला, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे, नानक जिन प्रभ आप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा, ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहं बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हिता, ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अध्याखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक, पुरतार है जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार, नानक ओह अपरस सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, पर त्रेह रूप न पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद बिखिया पर हरै, मन की बाशना मन ते टरै, इंद्री जित पंच दोग ते रहत, नानक कूट मध्य को ऐसा अपरस, बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिस्न की माया ते होए पेन, कर्म करत हो वै नहे कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म,
काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग रचै। मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल। आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला भरम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन परीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जाग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै। वेद पुराण सिमरत बूझै मूल, सूखम मैं जानै असथूल। चौह वरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौह वरना मैं जपै को नाम। जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जान कोए। कर कृपा अंतर उर तारै, पास प्रेत मुगद पाथर कौतारै। सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम। काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म। जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास। आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया। सदा निकट निकट हर जान, सुदास दरगै परवान। अपने दास कौ आप कृपा करै, तिस दास कौ सब सो जी परै। सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास। प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुक्त सो कहावै। तैसा हर्क तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग। तैसा सुवरन तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंक तैसा राजान। जो वरताए साई जुगत, नानक ओ पुरख कहिया जीवन मुकत। पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ। आपे करन करावण जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग। पसरेओ आप होए आनत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग। जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश। सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार। नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी। कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी। कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन भ्रमै उदासी। कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते। कई कोट आत्म ध्यान धारै, कई कोट कब काब विचारै। कई कोट नवतन नाम ते आवै, नानक करते का अंत न पावै। कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी। कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर। कई कोट पर दर्ब को हिरै, कई कोट पर दुख न करै। कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश परमाहे। जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी। कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए। कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भू मंडल। कई कोट ससियर सूर नखियत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शत्र। सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस तारै। कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अर शास्त। कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत। कई कोट किए चैर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवरन थीवे। कई कोट जख है किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगाच। सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर।
कई कोट पाताल के वासी, कई कोट ब नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीवै मरै, कई कोट बहुजो नहीं फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट घालै थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भए बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खो जंते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिल्यो प्रभ अविनाश, कई कोट मांगै सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन तहन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्थार, कई बार पसरियो पसार, सदा सदा एक एक ओंकार, कई कोट कीने बहु भांत, प्रभ ते होए प्रभ माहे समात, ताका अंत न जाने कोए आपे आप, नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तत के बेते सदा निहारै एको नेत्रे, कई कोट नाम रस पीवै अमर भय साद साध ही जीवै, कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहज समावै, अपने जन कौ सास सास समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक किस बल हारण है, जल थल मही अल सोए, अष्टपदी करण करावण करने जोग, ज्योतिष पावै सोई होग, खिन मै थाप उथापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अतार रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार, हुक्मे अनक रंग प्रकार, कर कर देखै अपनी वडियाई, नानक सब मैं रहया समाई, प्रभ पावै मानुख गत पावै, प्रभ पावै ता पाथर तरावै, प्रभ पावै बिन शास्ति राखै, प्रभ पावै ता हर गुण पाखै, प्रभ पावै ता पतत उधारै, आप करै आपन बिचारै, दोहां सिरियां का आप स्वामी, खिलै बिगसै अंतर जामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मनुख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अन जानत बिख्या मैं रचै, जे जानत आपन आप बचै, परमे भूला दह दिसतावै, निमुख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिसे अपनी भगत दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावै, जाका अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा न गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिस की रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बडाई, इसका बल नाही इस हाथ, करण करावण सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपुरा जियो, ज्योतिष पावै सोई पुन थियो, कबहू ऊंच नीच मैं बसै, कबहू सोग हरख रंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार, कबहू निरत करे बहु भांत, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की हो तरवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू पिखारी नीच का साजा, कबहू आप कीरत मह आवै, कबहू भला भला कहावै, ज्यों प्रभ राखै तिविही रहै, गुरप्रसाद नानक सच कहै, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मोन धारी लावै ध्यान, कबहू तट तीरथ इसनान, कबहू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भर मैं भर मिया, नाना रूप ज्यों स्वांगी दिखावै, ज्यों प्रभ पावै तिवै नचावै, ज्योतिष पावै सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, कबहू साध संगत ए पावै, उस अस्थान ते बहुर न आवै, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस अस्थान का नहीं विनाश,
मन तन नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मै जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए बिसराम नानक प्रभ कै सद कुरबान सलूक सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत सुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टाका जंत आपस को कर्मवंत कहावै जन्म मरै बहु जोन परमावै धन भूमिका जो करै गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानक इहां मुक्त आगै सुख पावै धनवंता होए कर गर्भावै तृण समान काश संग न जावै बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस फल पीतरता का होए विनाश सब ते आप जानै बलवंत खिन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुरप्रसाद जाका मिटै अभिमान सो जन नानक दरगै परवान कोट कर्म करै हों तारे श्रम पावै सगले बिर थारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनेक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगै कहो कैसे गावै आपस कहो जो भला कहावै तिसे भलाई निकट न आवै सर्ब की रेन जाका मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते काश होए तब इस को सुख नाही कोए जब ए जाने मैं किश करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ की कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस खटे लख को उठतावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनेक भोग विख्या के करै नह तृपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बडभागी किसै प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा होए आपे आप प्रभ सोए जो किश कीनो सो अपने रंग सब ते दूर सब हूं कै संग बूझै देखै करे बबेक आपे एक आपे अनेक मरे ना बिन सै आवै ना जाए नानक सद ही रहया समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप कीनो आपन बिसखार सब कछ उसका ऊ करने हार उस ते भिन्न कहो किश होए थान थनंतर एक सोए आपने चले तो आप करने हार कौतक करें रंग अपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वख्यानी सच सच सच सब कीना कूट मधे किने बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवण बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मान प्रीत सलोक संत सरण जो जन परै सो जन उदरण हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै संत कै दुखन जम के नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक मैं पाए संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हते कौ रखे न कोए संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत कै दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प ज्यों पाए संत कै दुखन तिरगद ज्यों तिरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मै जलै संत कै दुखन सब को शलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का थाऊ को नाहे नानक संत पावै ता ओय पी गत पाहे
संत का निंदक महातताई, संत का निंदक खेन टिकन न पाई, संत का निंदक महाहत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज तेहीन, संत का निंदक दुखिया आर दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दोख मैं दोख, नानक संत पावै ता उसका भी होए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बेकारी, संत का दुखी जन्म है मरै, संत की दुख ना सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाऊ, नानक संत पावै ता लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै, संत के दुखी को उद्यान परमाइयै, संत का दुखी उजड़ पाइयै, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मृतक की लोथा, संत के दुखी की जड़ की शनाहे, आपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी कौ अवर न रखन हार, नानक संत पावै ता लै उबार, संत का दुखी इउं बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईधन नहीं त्रहपै, संत का दुखी छुटै अकेला, ज्यों बुआड़ तेलो खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सद मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्यों तिस पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरै ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजा ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख ना त्रष्टै कोई, जैसा पावै तैसा कोई होए, पया कीर्त ना मिटै कोई, नानक जानै सच्चा सोए, सब घाट तिस क्यों करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावह सास की रास, सब कछ वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनु कृपा करे तिस आपन नाम दे, बडभागी नानक जान से सलूक, तज हो सियानप सुरजनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पाओ जाए, अष्टपदी मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लग आए, मारे रख है एक आप, मानुख कह किश नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागै कोए, उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहिला कर लेह जियो, नन हो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बडभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करै विचार, से तनवंत गने संसार, मन तन मुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानो ते सुखी, एको एक एक पछाना है, एत उत कियो सोजी जानै, नाम संग जिसका मन मानया, नानक तिन्ह निरंजन जानया, गुरप्रसाद आपन आप सुजै तिसकी जानो, तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बखियान, ग्रस्त मैं सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तेसा है न लागै दुख, जिस कौ हार प्रभ मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं डुलावै, जिस प्रभ अपना कृपा करै, सो सेवक कहो किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद तत सब बूझिया, जब देखो तब सब किश मूल, नानक सो सूखम सोई असथूल, नह किश जन्मै नह किश मरै, आपन चले तो आप ही करै, आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनक जुगत राच, थाप उथाप,
अविनाशी नाही किश खंड, धारण धार रहो ब्रह्मांड, अलख अपेव पुरख परताप, आप जपाए त नानक जाप, जिन प्रभ जाता सु सुभावंत, सगल संसार उधरै तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उधारण, प्रभ के सेवक दुख बिसारण, आपे मेल लय कृपाल, गुरु का शब्द जप भय निहाल, उनकी सेवा सोई लागै, जिसनु कृपा करै बड भागै, नाम जपत पावै बिसराम, नानक किन पुरख को उत्तम कर मान, जो किश करै सो प्रभ कै रंग, सदा सदा बसै हर संग, सहज सुभाए होवै सो होए, करणे हार पछाणै सोए, प्रभ का किया जन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना, जिस ते उपजे तिस माहे समाए, ओए सुख निधान उन्हु बन आए, आपस को आप दीनो मान, नानक प्रभ जन एको जान, सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ, बिरथा जन नहार, जाकै सिमरन उधरियै, नानक तिस बलहार, अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल, सर्ब जिया आपे प्रतपाल, सगल की चिंता जिस मन माहे, तिस ते बिरथा कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी प्रभ आपे आप, आपन किया कछु न होए, जे सौ प्राणी लोचै कोए, तिस बिन नाही तेरा किश काम, गत नानक जप एक हर नाम, रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जोत सगल घाट सो है, धनवंता होए क्या को गर बै, जा सब किश तिसका दिया दर बै, अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहतावै, जे को होए बहे दातार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद टूटे हाँ रोग, नानक सो जान सदा आरोग, ज्यो मंत्र को थमै थमन, त्यो गुर का शब्द मनै अस थमन, ज्यो पखाण नाव चढ़ तरै, प्राणे गुर चरण लागत निस तरै, ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए बिगास, ज्यो महाद्यान मैं मार्ग पावै, त्यो साधु संग मेल ज्योत प्रगटावै, तिन संतन की बाछौ तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बेल लाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइए, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसै चितार, जो काशु करै सोई सुख मान, भूला काहे फिरै आजान, कौन बस्त आई तेरे संग, लपट रहे ओ रास लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया, तज अभिमान लेहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल, लाद खेप संतै संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल, धन धन कहे सब कोए, मुख उजल हर दरगह सोए, एहो वापार विरला वापारै, नानक ताकै साध बल हारै, चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो, साध की तूर करो इसनान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा बड़ भागी पाइय, साध संग हर कीर्तन गाइए, अनक बिगन ते साधु राखै, हर गुण गाए अमृत रस चाखै, ओट गही संतै दर आया, सर्व सुख नानक तेह पाया, मेरे तक कौ जीवल नहार, भूखे को देवत आधार, सर्ब निधान जाकी दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे, सब किश तिसकाउ करने जोग, तिस बिंदु सर होआ ना होग, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल ए करनी, कर कृपा जिस कौ नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, भगत भगत सुनिए ते हो लोए, जा कै हिरदय एको होए, सच करणे सच ताकी रहत, सच हिरदय सत मुख कहत, साची दृष्ट साचा आकार, सच वरतै साचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता, सलोक रूप न रेख न रंग केशो, त्रेहो गुण ते प्रभ भिन्न, तिसै बुझाए नानका, जिस हो वैसो प्रसन्न, अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मै राख, मानुख की तू प्रीत त्याग, तिस ते परै नाही किश कोए, सर्ब निरंतर एको सोए,
आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कह मन एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन भरन जा का नेत्र फूर तिसका

नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोई चंगा ना उर खाए कै जस कीरत जागले जीत सुनदर न आवई तवात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लो पाताल सुने पोहे न सकै काल नानक भगत सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद सुने मुख साला हनुमंद सुने जुग जुग तन भेद सुने शास्त्र सिमृत वेद नानक भगत सदा विगास सुने दुख पाप का नाश सुने सत्संतोख ज्ञान सुने अठसठ का स्नान सुने पढ़

जयपचुता एकागद कलम न लिखन हारु मन्ने का वैकरण विचारु ऐसा नाम निरंजन हुए जिको मन जाने मन कुए मन्ने सुरत हुए मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मुह चोटा न खाए मन्ने जम के साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन हुए जिको मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक न पाए मन्ने पथ्यो प्रगट जाए मन्ने मग न चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन हुए जिको मन जाने मन कोए मन्ने पावह मोक द्वार मन्ने परवार ऐसा धार मन्ने तरह तारे गुरसिख मन्ने नानक पवह न पिक ऐसा नाम निरंजन हुए जिको मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावह दर गहमान पंचे सोह दर राजान पंचा का गुर एक त्यान जिको कह करे विचार करते कह करने नहीं सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख था प्रक्या जिन सूत जिको बुझे हुए सचियार तबल ऊपर किता पार धरती होर पर होर तिस्ते पार तले कवन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम।

सुई जा करता सिरठी कौ साजी आपे जाने सुई क्यों कर आखा क्यों सालाही क्यों वरनी क्यों जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा काहू है नानक जी को आपो जाने अगे गया न सूए पाताल पाताल लख आगास आगास ऊड़क ऊड़क पाल थके वेद कहनिक वात सहस अठारह कहनक तिबा असलू एक धात लिखा हुए तां लिखी है लिखै हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अतै वाह पवह समुंद न जानी है समुंद साह सुल्तान गिरह सेती माल धन कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनु न विसरह अंत न सिफती कह न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखण सुनन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जा

आखे पड़े करह वख्यान आखे बरमे आखे इंद आखे गोपी तै गोविंद आखे ईश्वर आखे सिद्ध आखे किते किते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुन जन सेव किते आखे आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे इते किते होर करे ता आख न सकह के जीवड़।

साथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वारु, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती ताप रखी धर्मसाल, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत। करमी करमी होए विचारु, सच्चा आप सच्चा दरबारु, तिथै सोहन पंच परवार, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जा पै जाए, धर्म खंड का यो धर्म, ज्ञान खंड का या को कर्म, किते पवन पाणी वैसंतर, किते काण महेश, किते बरमे घाट घड़ी है, रूप रंग के वेश, केतियां कर्म भूमि मेर, केते केते धूप देश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देवदान मुन, केते केते रतन समुंद, केतियां काणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद, केतियां सुरती सेवक, केते नानक अंत नंत, ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै घाड़त घड़ियै बहुत अनूप, ता किया गल्ला कथिया न जाए, जिकु कह पिछै पछताए, तिथै घड़ियै सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़ियै सुरां सिद्धां की सुध, कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोद महाबल सूर, तिन महराम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता महिमा माहे, ताके रूप न कथने जाहि, ना उहि मरहि न ठगि जाहि, जिन कै राम वसै मन माहि, तिथै भगत वसै के लोक, करहै आनंद सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै तंत नंत, तिथै लो लो आकार, जिव जि हुकम तिवै तिवकार, वेखै विकसै कर विचार, नानक कतना करड़ा सार, जत पहारा धीर सुनियार, अहरन मत वेद हथियार, भाव खलागन तपताओ, भांडा भाव मृत ढाल, घड़ियै शब्द सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल, सलोक पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दुए दाई दाया, खेलै सगल जगत, चंगे आईयां।

दरगह अंदर पाइये तगना तुट सपूत महला पहला तगना इंद्री तगना नारी पलके तुप वैनित दाड़ी तगना पैरी तगना थी तगना जीवा तगना खीवे तगना आपे वत्ते वटता।

रोटी टिक्का तय जब माने दान मिले चा खाई अंतर पूजा पढ़ाई करते बस जब दुखा भाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जा तरंदा महला पहला।

मन जुठे चुल्ली परे कहो नानक सच त्याई है सच होवे तो सच पाई पूरी चिते दर्शन।

सत्मा हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड दिखै बिख काही माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मलंत जंत्रास मटाई एक अरदास पाठ कीरत की

जी जौ तौ प्रेम खेलन का चाओ सिर धर तली गली मेरी आओ इत मार्ग पैर तरी जै

मन तत् अविगत ते आया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले, सेत वर्ण सब दूता, ब्रह्म कमल मद्दता।

सर्व दृष्ट लोचन सब अब अंतर, सर्व दृष्ट लोचन अब अंतर, एका नदर सूत्र पवन सार, पवन पानी अगन तिन किया, ब्रह्मा

सात निरंजन राते निर्भउ स्यो लिवलाई ऐ जियो नाम दृढ़हु नामे लिवलावहु सतगुर टेक टिकाई जो तिस भावै सोई करसी किरत न मिटिया जाई ऐ जी भाग परे गुर सरण तुम्हारी मैं अवर न दूजी पाई अब तब एको एक।

परमात भरम न चूकई, जग जन्म ब्याद खपंग, अस्थान हर नेह केवलं, सतमती नाम तपंग, इहो जग मोह हेत व्यापतं, दुख अधिक जन्म मरणं, भज सरण सतगुर उबर है, हर नाम रिद रमणं, गुरमत निहचल मन मन मनंग, गुरमत निहचल मन मन मनंग सहज विचारं, गुरमत निहचल मन मन मनंग सहज

रहाओ। आप न चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे, इस मन अंधे को मार्ग पाए। अन दिन नाचे सख्त निवारे, सेव घर नींद न हुई, शक्ति घर जगत सूता, नाचे टापे अवरु गावे, मन मुख भगत न हुए। सुर नर विरत पख कर्मी नाचे, मुनजन ज्ञान विचारी, सिद्ध साधक लिवलागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी, खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी।

जिनको कृपा तुम्हारी रहाउ। सनक सनंदन नारद मुन सेवह, अनदिन जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहलाद जन आई, तिनकी पैज सुवारी। अलख निरंजन

है अकथ कथा नित न्यारी, सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुल तारी। मन मुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा न पावे, हुए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धूवे, ओह मल पख माया धारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार न पारी। एहो परपंच खेल किया सब करतै, हर करतै सब कल धारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूत खिंचै एकंकारी। रसन रसन रस गावह हर गुण, रसना हर रस धारी। नानक हर बिन

जलत अनिक तरंग माया, गुर ज्ञान हर हृद मंत, छेद अहंग बुद्ध करुणा मैं, चिंत मेट पुरख अनंत, सिमर समरथ पल मुहूर्त, प्रभ त्या

मोह मिथन दुरंत आसा, वासना विकार रख धर्म भरम बिदार, मन ते उदार हर निरंकार, तनाड़ आड़ भंडार हर निद होत जिना ना चीर, खल मुगद मूड कटाख श्री धर भय गुणमत तीर, जीवन मुक्त जगदीश जप मन तार रिद प्रतीत, जी दया मया सर्वत्र रमण परमहंस रीत, देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार, अंग संग भगवान प्रसन्न प्रभ नानक पतत उदार।

वस आपने कीता, गणतै प्रभु न पाईऐ दूजे परमीता। सतगुर मिलिया जीवत मरै बुझ सच सुमीता।

जो हार सुख पर हर त्याग दे, दुख होमे पाप कमाए। मानमुख अज्ञानी माया मोह व्यापे, तिन बूझ न काई पाए। हालत पलत कोई